निकट माता दीदी बहिनी, निकट माता दीदी बहिनी, यो रेडियो दीदी बहिनी।

करने सकी ना। हेरण हृदय में गुमसे भावना सताने सकिन। शायद हमारा प्रेम अधुरो होना लिखे।